सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 7.

तबाही नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव हैं, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी एक गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन 2,
1: नंबर 6।

ऊंचा लंबा कद, यार टाइटल ही काफी है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी आए जिनकी पहली फिल्म से ही उनका कद जो है वो काफी ऊंचा हो गया था, लेकिन उसके बाद हर फिल्म उसी के नीचे खड़ी नजर आई। आदित्य धर, फ्रेश ऑफ द सक्सेस ऑफ धुरंधर, उन्होंने इससे पहले बनाई थी उरी, एक फिल्म जिसको देख के लगा कि यार ये आदमी कहां जाएगा, लेकिन फिर आया 6 साल का इंतजार, और जब धुरंधर फाइनली आई तब समझ आ गया शराब गए नहीं थे, he was cooking। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं, अभिनव कश्यप, दबंग में उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई थी, एक पूरा फ्लेवर क्रिएट किया था।

लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाई बेशरम, फिल्म नहीं चली एंड उसके बाद कैमरा के पीछे अभिनव भी गायब हो गए। देन देयर इज तरुण मनसुखानी, दोस्ताना नाम की फिल्म जो 2008 में आई थी, एक अर्बन नया बॉलीवुड मिला। फिर ही मेड अ फिल्म कॉल्ड ड्राइव और वो मैजिक दोबारा नहीं बना। तो सवाल ये नहीं है कि पहली फिल्म फ्लूक थी कि नहीं, सवाल ये है कि पहली फिल्म के बाद फिल्म मेकर अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करता है। कोई भी डायरेक्टर वन हिट वंडर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है कि उसके बाद हर फिल्म का हिसाब उसी से होता है। लेकिन दोस्ताना की वो दुनिया यार एक गाने में अब भी बिल्कुल फ्रेश लगती है, जाने क्यों, क्या गाया है विशाल ददलानी ने। इट इज अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन और ये बन रहा है मेरे इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक। टॉप 20 रिवाइंड।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए 1.5 दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जेनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम टू नंबर 1। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर छोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: गड्डियां उच्चियां रखियां ओ नारा वो जट दे पिछे आ पर तू मैनू बाली जचदी लक ते गुची दा बेल्ट तू पाया।

0: गुड़ खालिया गुड़ वाली चा किन्न पीती
1: बुआ जी का नाना किन्न खिचया
0: खिच के मर किन्न सीटी।

energy. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए करते हैं। उसके साथ साथ हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक, सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड आज काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। इस काउंटडाउन की शुरुआत ही आज एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाना नंबर 10 पर डेब्यू करता है बंजारे का गाना बरसात। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे। एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप। इस सुपर इनक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर। रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: Number 10.

0: द मैन द मिथ द लेजेंड संजू राठौर की आवाज दैट वाज बैंगल्स पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप. कौन सा गाना किसको अच्छा लगता है, कोई एक गाने से कितना डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. आई ट्रूली बिलीव दैट हमें कोई गाना हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से अच्छा लगता है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट, जो बहुत बार हम जिस सिचुएशंस में होते हैं, जिस एनवायरमेंट में होते हैं, जिस दौर में होते हैं अपनी जिंदगी के, उससे कनेक्टेड होता है. बट ऐसे गाने होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए प्ले करने वाले हैं. बट वन थिंग आई ऑब्जर्व थ्रू द वीक्स इज जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं, उसकी इंट्रो म्यूजिक पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. दैट मेक्स अस रियलाइज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रो म्यूजिक, जैसे दिस वन बाय लकी अली. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है कौन से वाला गाना है. इट्स अ हाई बीट वन. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर मुझे आके बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए वी विल प्ले वन ऑफ दीज सॉन्ग्स ऑन आवर कैसेट क्लासिक्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन, अगले वाला गाना ज़ारा खान स्केल्स का मूव बॉडी. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8.
1: Number 8.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7 7

0: गर्व विद प्रियांश की कॉम्पोजिशन, प्रियांश जो नीता गांधी की आवाज में दिस अटली ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे। इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Kasat Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है। हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: तेरी दीवानी,
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है बिजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है। मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है। सो दिस वॉज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ। सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s। दिस सॉन्ग रिमाइंड अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम। एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेट्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी, एनर्जी ठुमका वो अंदाज, गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है। इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है। एंड खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है। बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर हैं इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया। हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट RJ कनिका पर। अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम। सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: डूड, ये गाना सुन के मैं बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिका पर आओ, कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड दिस सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Mirchi. It's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 7.

दवा ही, नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव है, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी एक गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन टू,
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 3
3: लेट्स गो

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए डेढ़ दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जेनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम्ड टू नंबर वन। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर वन।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर चोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Itchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: This is something special.

0: physical doctors. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग, चलो चेक करते हैं आज का मौसम का हाल चाल क्या है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसला। फिलहाल टेम्परेचर है 68 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काई इज क्लाउडी लेकिन फील हो रहा है 70 डिग्रीज फारेनहाइट तक। सो टेक्निकली वेदर कह रहा है मैं थोड़ा सा आज वार्म ही रहने वाला हूँ तुम्हारे साथ। सुबह 9 बजे के आसपास क्लाउड्स थोड़ा सा ब्रेक होंगे एंड वी आर लुकिंग एट पार्टली क्लाउडी कंडीशंस। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं विच इज गोइंग टू बी 68 डिग्रीज फारेनहाइट से 80 डिग्रीज फारेनहाइट तक, लेकिन फील होने वाला है 72-83 डिग्रीज फारेनहाइट। कल के कंपैरिजन में आज का हाई ऑलमोस्ट सेम है, 80 डिग्रीज टुडे वर्सेस 81 डिग्रीज यस्टरडे। सो टेम्परेचर वाइज बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है मौसम में। रेन की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में अराउंड 2 मिलीमीटर्स की बरसात हुई है एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीमीटर्स रेन एक्सपेक्टेड है। सो लाइट रेन का चांस है, ये माइंड में रखकर ही बाहर निकलना एंड होपफुली योर कम्यूट स्टेज ड्राई एंड योर कॉफी स्टेज हॉट। बाहर निकलोगे तो कैरी योर वाटर बॉटल, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड वेयर योर SPF 50++++ एंड साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनकर ही बाहर निकलना एंड सुनते रहो मिर्ची मेरे यानी कि प्रिसला के साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर 9033647224। Stay tuned and...

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। राज, हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। 1888 में लंदन में मैरियान निकोलस का मर्डर हुआ, जिसे जनरली जैक द रिपर का फर्स्ट विक्टिम माना जाता है। 1957 में मलेशिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। एंड फन फैक्ट, मलेशिया का नेशनल डे हरी मर्डे का भी आज 31 अगस्त को ही सेलिब्रेट होता है। मर्डे का मतलब फ्रीडम। 1962 में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यानी कि मुझे लगता है 31 अगस्त इज सीरियसली गिविंग ब्रिटिश एम्पायर प्लीज लॉग आउट वाला वाइब। 1980 में पोलैंड में सॉलिडारिटी मूवमेंट स्टैब्लिश हुआ after shipyard workers won the right to strike and organize freely. 1991 mein Uzbekistan aur Kyrgyzstan ne Soviet Union ke dissolve hone ke beech apni independence declare kiya. Aur 1997 mein the world lost Diana, Princess of Wales, after a tragic car crash in Paris. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। व्हाट्सएप का नंबर है मेरा 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड फॉलो मी @ मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। अभी चलाते मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

इट्स टाइम फॉर ऑफिशियली स्टार्टिंग योर डे इन मिर्ची स्टाइल। तुम्हारी मॉर्निंग्स को ऑफिशियली मिर्ची फाई करने के लिए मिर्ची मॉर्निंग्स तो शुरू हो चुका है, एंड आई एम हियर टू एड दैट थोड़ा सा तड़का टू योर कॉफी, एग्जैक्टली थोड़ी सी मिर्ची टू योर कम्यूट, एंड होपफुली थोड़ा सा जीरो ट्रैफिक टू योर मूड। अब ट्रैफिक तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा मूड अच्छा करना, तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी मिर्ची एड करना मेरे हाथ में है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, सुबह सुबह अलार्म तो अमेरिका में बजता है, लेकिन घंटियां जो है वो सिर्फ इंडिया में बजती है, क्यों है ना। अब एक हाथ में कॉफी, दूसरे में फोन, और दिमाग जो है उसको एक ही थॉट पर रखो कि आज सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। सो बकल अप, बिकॉज़ वी आर अबाउट टू गेट इनटू मिर्ची वाइब्स, फन कॉन्वर्सेशन, एंड ऑल द लिटिल थिंग्स दैट मेक यू वेरी वेरी हैप्पी। मुझे फटाफट से फॉलो भी कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब बारी आ चुकी है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। सबसे पहले सितंबर 1 से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास स्टैम्प करवाने का झंझट नहीं होगा। इफ दे आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, फोन पर ई बोर्डिंग पास दिखाओ या पेपर कॉपी कैरी करो, स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब वो टाइनी लिटिल स्टैम्प जो हम देसी इतना सीरियसली संभाल कर रखते हैं, फाइनली गॉट इट्स रिटायरमेंट। एंड यस, दिस अप्लाइज टू ऑल पैसेंजर्स डिपार्टिंग इंटरनेशनली फ्रॉम इंडिया। नंबर 2 पर, नेपाल के डेवेस्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स में आसपास की स्ट्रक्चर के लैप्स हो जाने के बाद सिर्फ एक ग्रीन हाउस स्टूड इट्स ग्राउंड। रिपोर्ट्स पॉइंट टू इट्स रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम एंड कंस्ट्रक्शन, व्हाइल इट्स पोजीशन में आल्सो हैव हेल्प्ड डाइवर्ट सम ऑफ द पावरफुल करंट एंड डिब्रीज। एंड नंबर 3 पर, स्पोर्ट्स से 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच फर्स्ट राउंड में अर्जेंटीना के मारियानो नोवानेस से 5 सेट्स में हार गए। जोकोविच स्ट्रगल्ड फिजिकली थ्रू आउट द मैच, इंक्लूडिंग वॉमिटिंग एंड क्रैम्पिंग बिफोर इवेंचुअली losing it. It's his first opening round Grand Slam loss since 2006. And that is your Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Prisala. Connected row mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp karo 9033 Mirchi par, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

नमस्कार, मैं हूँ प्रिसिला। तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो कि आज तुम्हारे साथ हैप्पी बर्थडे कौन मना रहा है अपना। लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। मे योर केक बी बिगर देन योर आई एम जस्ट हैविंग वन बाइट वाला प्रॉमिस। एंड मे नोबडी आस्क यू की बेटा शादी कब कर रहे हो, या अगर शादी हो चुकी तो बच्चे कब कर रहे हो। एंड आज की डेट में तुम्हारे साथ बर्थडे शेयर करने वाले आइकॉनिक सेलिब्रिटीज हैं। सबसे पहले हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर, प्रिटी वुमन वाले यार, कॉमेडियन एंड एक्टर क्रिस टकर, एंड नोन फॉर ग्रेज एनाटॉमी सारा रामिरेज, क्वीन राइना ऑफ जॉर्डन इज आल्सो अ बर्थडे गर्ल फॉर टुडे। म्यूजिक लवर्स लिसन अप, लेजेंडरी सिंगर सॉन्ग राइटर वैन मॉरिसन एंड इट्साक पर्लमैन, रूडोल्फ शेंकर एंड पॉप स्टार डेबी गिब्सन ऑल शेयर देयर बर्थडेज विद यू टुडे। और हिस्ट्री की गलियों से आज है बर्थ एनिवर्सरी जहांगीर द फोर्थ मुगल एम्परर की, हु वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1569। द रोमन एम्परर Caligula was also born in AD 12. We also remember actors Buddy Hackett and James Coburn, who were born on this date. Ab to mujhe apne birthday shout outs bhej sakte ho. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. Ya phir tum mujhe WhatsApp kar sakte ho 9033 Mirchi par, that's 9033647244. Once again, happy birthday. Bajati hu tumhare liye kuch Mirchi dar bangers. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। मिर्ची आवर का 3 आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर, जहाँ पे तुम्हें 3 खबरें मिलने वाली है। सबसे पहले एरिज़ोना के आइकॉनिक ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में पावरफुल फ्लैश फ्लड हिट हुआ है। एटलीस्ट 20 पीपल आर रिपोर्टेड मिसिंग व्हाइल मोर देन 60 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड। वीडियोस में फ्लड वाटर्स को ह्यूज बोल्डर, मेटल स्ट्रक्चर्स और डिब्रीज को लिटरली पुश करके कोलोराडो रिवर की तरफ ले जाते हुए देखा गया है। एनीवन एनीवेयर नियर द अफेक्टेड एरिया प्लीज फॉलो पार्क एंड लोकल इमरजेंसी ऑफिशियल्स। नंबर 2 पर यूएस यूजर्स को लेक ओंटारियो लेक अमेरिका के नाम से दिखाई दे रहा है, फॉलोइंग अ यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कनाडा में इट रिमेन्स लेक ओंटारियो, व्हाइल यूजर्स एल्सवेयर में सी बोथ नेम्स। एंड लास्टली क्रिकेट से, पाकिस्तान्स टेस्ट क्रिकेट रैकेट टेक्स अ टफ टर्न। इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स में 194 रन डिफीट के बाद पाकिस्तान नाउ हैज 154 टेस्ट लॉसेस वर्सेस 153 विंस फ्रॉम देयर 473 टेस्ट। That means, for the first time in history since 1987, Pakistan have more test losses than wins. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla. Connect karo mujhse Insta aur X par at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp karo 9033 Mirchi par, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब बारी आ चुकी मिर्ची मॉर्निंग्स पर पता करने की कि आज हमारी किस्मत में क्या लिखा है। लेट्स फाइंड आउट।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इट इज यानी मेष राशि, आज पीस मेंटेन करने के चक्कर में अपनी नीड्स को साइड मत करो, बोल्ड मूव लो, पर बर्न आउट को इनविटेशन मत दो। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, तुम्हारा क्वाइटर साइड नोज एग्जैक्टली व्हाट योर होम नीड्स। मनी मैटर्स में रियोश्योरेंस मिल सकता है और वर्क प्ले बैलेंस भी बेटर होने वाला है। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 27। जेमिनी यानी मिथुन राशि, से व्हाट यू मीन क्लियरली, वर्क कन्वर्सेशंस में वर्ड्स केयरफुली चूज करो, वाइल फैमिली साइड से गुड वाइब्स आ सकती है। लकी कलर इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 8। कैंसर यानी कर्क राशि, आउटसाइड वर्ल्ड कुछ और चाहता है, होम कुछ और चाहता है, और तुम बीच में ह्यूमन टग ऑफ वॉर हो। मार्स गिव्स यू एक्स्ट्रा एनर्जी, सो यूज इट वाइजली। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, बिग आइडिया है, ग्रेट, बट एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा सा हार्ट और थोड़ा सा कैलकुलेटर भी यूज करो। कैश फ्लो पर नजर रखो मिर्जान। लकी कलर इज रॉयल पर्पल, लकी नंबर इज 19। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, हर प्राइवेट प्रॉब्लम को एक ही दिन में सॉल्व करना जरूरी नहीं होता दोस्त। फोकस करो और कॉलीग्स के डिस्ट्रैक्शंस और क्वेश्चनेबल एडवाइस से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। लकी कलर फॉर यू इज क्रीम कलर, लकी नंबर इज 42। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 1। स्टार्स ने एडवाइस दे दी है तुमको, बाकी बची 6 राशियों की एडवाइस लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप मी योर थॉट्स 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Welcome back to Rashi Zone. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब बात करेंगे लीब्रा से पाइसीज तक.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लीब्रा यानी तुला राशि, रिलेशनशिप नीड्स को अर्ली एक्सप्रेस करो. फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बट ट्रस्टेड एडवाइस से सॉर्ट कर लो सब कुछ. लकी कलर इज रोज गोल्ड. लकी नंबर इज 6. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, योर डेली रूटीन शुड सपोर्ट योर बिग एम्बिशन. एक्साइटमेंट में प्रोफेशनल प्रॉमिसेस ऐसे मत करो यार कि बाद में जाकर हेडेक बन जाए. लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू. लकी नंबर इज 23. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, नेक्स्ट एडवेंचर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दो. तुम बॉसेस और VIPs पे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना सकते हो. सो कॉन्फिडेंस ऑन ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 37. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, होम या वर्क में एक स्मॉल एडजस्टमेंट पूरा डे स्टेबल कर सकता है. स्टेप बाय स्टेप चलो, शॉर्टकट के चक्कर में GPS को कंफ्यूज मत करो मेरे दोस्त. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 11. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग्स के लिए ओपन रहो यार. सोशल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा क्वाइट मी टाइम भी जरूरी है. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 29. पाइसीज यानी कि मीन राशि, ट्रस्ट दैट इंट्यूशन. पाइसीज मून हेल्प्स यू क्लोज अनफिनिश्ड चैप्टर्स एंड टाई अप लूज एंड्स. बेसिकली कॉस्मिक यूनिवर्स कह रहा है पेंडिंग टैब्स को क्लोज करो और आगे बढ़ो. लकी कलर इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 4. एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2. अब स्टार्स का सिग्नल मिल गया है, बाकी तुम्हारी लाइफ का वाईफाई तुम्हारे हाथ में है. मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ. फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. और अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033 6472 4. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाड वाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. It's hot.
2: Sara zamana hai sara ka deewana.
0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
3: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़ी इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया, ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो कैंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक के दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था. और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी. एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट. और उस टाइम पे तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं. और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर. और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी. काफी शोज आए काफी शोज गए लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि यू नो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये है कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से है। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और मैं इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट हैं, तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे। हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने। और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स, जो के से ही शुरू हुआ करते थे। राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट। और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे, और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Countdown shows में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो at that time this was just a melody for us. किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा?
0: मिर्ची 90s कैसेट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना.
2: तेरे भी जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा.
1: What a melodious track, यार. लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था. लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा. And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं, and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते. मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदाई हो जाता है यार. खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ. बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता. चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना. जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

0: Energy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। वेल, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था, और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के ना बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात की है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना, वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफ़ी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला, और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, he never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? शी सेड कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है, जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीठी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हमें से कौन टिकेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट ज़ीनत अमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हील चेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वॉज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी, एंड व्हाट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ, तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: वो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई
1: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में ये सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं, और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती है और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? यू विल बी शॉक्ड टू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। वेल ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

व्हाइट चूड़ीदार, व्हाइट कुर्ता एंड लहरिए वाला दुपट्टा, पुरानी जीन्स पे आप हूँ श्रेया के साथ। और कहते हैं चांदनी चौक के जितने भी स्टोर थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी। हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हूँ श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी। यस, द रिनाउंड भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू, एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक वाइट कुर्ता, वाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो, हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है। और वाइट चूड़ीदार और वाइट कुर्ता ख़त्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना, विच इज संग में सुरेश वाडकर। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: Energy. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हील चेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: वो शाम कुछ

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं, मैं और आप गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज होके, लेकिन दिल की बात जुबा पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआरई वाई श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। ओपिनियन हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति।
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं, हमारे यहाँ आजकल ओपिनियंस को लेकर ना काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं। मतलब अगर किसी भी चीज को लेकर आप एक स्टैंड लेते हैं तो आपको उस पर बुली करने लगते हैं लोग। नहीं, मैं भारी भरकम एग्जांपल कोट नहीं करने वाली हूँ। मैं ना अभी कुछ दिनों पहले जो यश की फिल्म आई टॉक्सिक, उसकी ही बात कर लेती हूँ। सो इस मूवी को लेकर देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल फाउंड ऑन इंटरनेट राइट नाउ। एक जो पसंद कर रहे हैं मूवी को और दूसरे जो नापसंद कर रहे हैं। और भाई, इन दोनों ही ओपिनियंस वाले लोगों को बुली किया जा रहा है कि ओह, कितने पैसे मिले नेगेटिव या पॉजिटिव पीआर के लिए, बताओ बताओ। क्यों भाई, एक इंसान आज की डेट में जो चीज फील करता है उसको खरे खरे बोल नहीं सकता। और बस इसी जिद पे मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि इस फिल्म की कहानी तबाही, एक्टिंग तबाही, डायरेक्शन तबाही, और इसी के साथ मेरे पैसों की भी तबाही। देखो, मूवी का नाम टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स है, जो आपको अपने इस फिल्म को देखने के ग्रोनअप डिसीजन पे सवाल खड़ा करने पे मजबूर कर देगी। 3 घंटे 15 मिनट की मूवी है, लेकिन 3 घंटे तक आप कहानी ही ढूंढते रहते हैं जिसको क्लोजर मिलता है लास्ट के 15 मिनट में। एंड स्टैट्यूटरी वार्निंग, अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज थिएटर में टॉक्सिक अवॉइड करें, क्योंकि यश और कियारा के ओह सो इंटीमेट एक्शन के अलावा फिल्म में कैमरा कभी स्टेबल ही नहीं होता है। इन शॉर्ट, जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट के डोज को बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज थिएटर जाके ये फिल्म जरूर देखना, वरना तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल की। प्रणाम मेरे भक्तों, मेरे भक्तों नहीं कन्हैया के भक्तों, प्रणाम प्रणाम। भाई लागी माँ जी, बच्चों को यहाँ पर साउंड सिस्टम से दूर रखें।

होगी। मेरा नाम है मदन कुमार, फॉलो मी ऑन माई चैनल।

0: Mirchie. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।